0: राजू,
1: आप मुझसे कुछ कह रही हैं?
0: भैया के बर्ताव से अब तक नाराज हो? मेरे प्यार पे इतना गुस्सा? मुझे तो तुम्हारे गुस्से पे भी प्यार आता है।
1: देखिए, मुझे लगता है कि आपकी अजय की शक्ल मुझसे मिलती है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ।
0: अजय, मैं आशा हूँ, तुम्हारी आशा।
1: मैं किसी आशा को नहीं जानता।
0: भैया ठीक ही कहते थे, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। मैं भैया से कह के तुम्हें अंदर करवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। वो तुम्हारा बात बात पर शर्माना, वो भोलापन, मैं तुम्हारा वो खत भी फाड़ दूंगी।